ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सदगुरु स्वामी महाद्वानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: करो मैं अर्ज करूँ, आई रिक्वेस्ट गुरुदेव, व्हाट डू वी रिक्वेस्ट, वी विल हियर।
1: Prosím Gurudeva, nebo žádám Gurudeva a o co, to se dozvíme v Paťanu.

ओम शलक पर जय महादेव की जय। देवाद देव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सतगुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय। ओम जय।

0: शलपुरजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरजी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत ऋषिमुनि महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्सनातन धर्म की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।
1: पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी आतरपुरी जी महाराज की जय।

रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं।

इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम शिवार्पणमस्तु। बोलिए भगवान श्री अलख पुरुषा महादेव की जय। देव पुरुषा महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय। निर्वाण षटकम्

बोलिए भगवान श्री अलखपुरीशा महादेव की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवपुरीशा महादेव की जय, श्री माधवानंद भगवान की जय, विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी सद्गुरुदेव की जय, आदि गुरु भगवान शंकरा

0: की जय।
1: जय
0: माधव कृष्ण भगवान की
1: जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद ब्रज गुरुदेव भगवान की
1: जय।

0: कल्पेन। इति श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं वेद सार शिवस्तव शिवार्पणमस्तु।
1: दीप नारायण
0: भगवान की जय।
1: देव पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: अलक पुरुषा
0: महादेव की जय।
1: श्री माधव कृष्ण
0: भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव
0: भगवान की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: ओम नमः
0: पार्वती पतये हर हर महादेव। सम

0: श्रीजीत नरम भगवान की जय, शिवानंद जी महाराज की जय।
1: What did he say?

बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री सत गुरुदेव की जय। बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री मंगला जी महाराज की जय, विश्व गुरु महामंडल स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलमगुरुमूर्ति पूजामूलमगुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।